0: नंबर वन।
1: नमस्ते, वेलकम टू यू ऑल फॉर दिस फोर डेज योगा अप्रिसिएशन प्रोग्राम विद ए प्रेयर। प्लीज सिट कंफर्टेबली इन एनी कंफर्टेबल पोस्चर विद बैक एंड नेक स्ट्रेट। क्लोज यूर आईज, relax your whole body, relax your whole body consciously, take a breath and exhale, again take a deep breath and exhale, now again take a deep breath and adopt namaskar mudra, chant om 3 times and a prayer, breathe in,